0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब आपको एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाए जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन आपने सपने देखे हैं ब्याह करने के इसी बंदे के साथ, तो क्या करोगे आप? सो माय बेस्टी, जिसके लिए एक ही रिलीजन है, विच इज कॉल्ड लव, उसे लव हो गया है विद हर मैरिड बॉस एंड नाउ शी इज लाइक कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे, मैं 5-6-7-8 साल बाद शादी कर लूंगी रोशी, मैं बस उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे प्यार करे। अब हमने उसे समझाया कि देखो बेटा, इस बंदे की ना सिर्फ शादी हो चुकी है, विच मीन्स ही हैज वन वाइफ, ही ऑल्सो हैज 2 children, इसका क्या करेंगे? शी इज लाइक, मैं छोटी माँ बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लगता है इस लड़की को हमें देवदास दिखानी नहीं चाहिए थी और अब उसने देख लिया है और अब उसे ऐसा लग रहा है कि 4 साल के बाद जनाब आएंगे, उसे कहेंगे कि हम एक शादी कर लेते हैं, मेरे बच्चों की तो छोटी माँ बन जाएगी एंड वी विल ऑल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। अब इस गधी को कौन समझाएगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन इफ यू हैव बीन इन लव विद अ मैरिड पर्सन बिफोर, अगर आप मुझे अपनी स्टोरी बताओ, शायद मैं ये स्टोरी उसके साथ शेयर कर सकती हूँ एंड देन ड्रिल सम सेंस इनटू हर कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Energy, burka.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
2: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने में चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो।
3: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद का बजा रहा है ये?
3: मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, तो यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया आप मेरे यहाँ वाले थे, बजाने वाले थे?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बचपन में मैं पढ़ा करती थी दैट फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. फिर मैंने आपकी जितनी भी अमेजिंग कन्फेशन थी वो सुनी एंड देन आई रियलाइज इट्स एक्चुअली ट्रू. फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: यू गेस्ड इट, आपका फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज फैक्ट शेयर करने का टाइम आ गया. सो इफ यू हैव अ क्रेजी कन्फेशन, व्हाई डोंट यू मेक इट राइट नाउ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. व्हाट्स योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी?
4: हाय रुचि, एक्चुअली थैंक यू कि मौका दिया आपने मुझे अपने शो पर आने का. तो जैसा मैंने लिखा था कि ये कोरोना टाइम का वक्त है जब चारों तरफ कोरोना था और मुझे भी कोरोना हो गया था. सो आई वाज आइसोलेटेड इन माय रूम फॉर मोर देन अ मंथ टू प्रोटेक्ट माय फैमिली. सो आई हैव माय वाइफ एंड टू किड्स. तो उस समय ऐसा हो गया था कि आई वाज एबल टू स्पीक टू माय फ्रेंड्स, नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू स्पीक टू मी मच एंड आई वाज सफरिंग ऑफ नेट एंड ऑल. सो आई थॉट आई विल मेक एन आईडी ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट. सो आई मेड एन आईडी ऑफ अ डिवोर्सी एंड आई एक्चुअली थोड़ा सा मैंने फिशिंग किया और एक और बंदी मुझे डिवोर्स से मिल गई. तो मुझे चैट शुरू हुई. एक्चुअली मैंने पहले जो ना इसको किया था वो इसलिए नहीं किया था कि आई वांटेड टू एक्ट लाइक दैट. आई जस्ट वांटेड टू हैव सम चैट बिकॉज कोई मुझसे बात नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी वाइफ से भी बात नहीं कर पाता क्योंकि जाहिर सी बात है उसको टेंशन होती है, जो भी होता वो अपने परेशान थी और मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा नहीं थे मेरे करीब. तो मैंने कहा चलो चैट वेट करते हैं ऐसे जस्ट फॉर फन, मतलब उसमें ऐसा कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं था. देन चैट होती रही, एक बंदी थी उससे मेरी बात होने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा. एंड देन पता नहीं अचानक वो क्या था नहीं था मुझे नहीं पता, बट ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज कि मुझे इससे शादी करनी है.
2: What?
4: और मैं उससे शादी करने के लिए निकल गया. हाँ, और मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया ये बात और मुझे लगा कि मैं संभाल लूंगा ये चीज, उतना नहीं पता चलेगा वो डिवोर्सी है कहाँ आएगी जो भी है उसको अलग जगह रख लूंगा. पैसे की ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं, मैंने चला कि मैं मेंटेन कर लूंगा क्योंकि अब खैर जो भी था जज्बात में था. तो वो मैं शादी कराया, सब कुछ हो गया और उसी शहर में जहाँ मैं रहता था वही ले आया. और वन फाइन डे जाहिर सी बात है कितना भी आप छुपा लेंगे कुछ भी कर लेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाएगा, जैसे कि आप कितना भी सोच लें कि ऐसा ना हो और अब जाएंगे पर ऐसा हुआ नहीं. और एक दिन किसी ने देख लिया, मेरी वाइफ को बता दिया, मेरी वाइफ ने भी एक दिन देख लिया, पहले पूछती रही क्या है नहीं, मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है पर वो देख लिया उसने फिर तो रंगे हाथों ही पकड़ गया. अब तो जाहिर सी बात है बात डिवोर्स पे आ गई थी और बहुत ही मामला सीरियस हो गया था. पूरे फैमिली मेंबर्स दोनों तरफ के सोचे कितनी ज्यादा मुश्किल मेरे लिए थी और मुझे रियलाइज हुआ मैंने ये क्या कर दिया. और तो फिर सिचुएशन ये हो गई कि भाई किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा और मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि या तो तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ, डिसाइड कर लो. देन मैंने सारी चीजें जब देखी क्योंकि मेरी शादी भी लव मैरिज ही थी अपनी वाइफ के साथ और वो मेमोरी लेन में जब गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्या बड़ा मिस्टेक मैंने किया है और मैं अपनी वाइफ का सच में बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत बहुत बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे माफ किया जो मैंने ये किया था और जिससे मैंने शादी की उससे भी मैंने बहुत माफी मांगी और वो भी बड़ी दिल वाली थी. मुझे लगता है मैं ही एक बहुत ही छोटा दिल का इंसान निकला इस पूरे सफर में जिसने ऐसा किया.
2: सॉरी, आई मीन आई डोंट रियली मीन टू जज यू बट लाइक सीरियसली दिस साउंड्स क्रेजी.
4: हाँ, और मैं सबको यही बोलूंगा कि ये सारी चीजें ना जज्बात में आके ऐसे आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कभी भी गड़बड़ हो सकती है सिचुएशन. आप जब इवेलुएट नहीं कर पाते हैं और चीजों को जज्बात में जाके कर जाते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है. पर मैं यहाँ लकी रहा कि दोनों ही चीजें, दोनों ने मुझे माफ किया, हालांकि जो भी कॉम्पनसेशन था वो मुझे देना पड़ा. बट ये एक डिजास्टर स्टेप था. मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल ऐसे मौके आ जाते हैं जहां आपको लगता है कि नहीं हमारे बीच कुछ सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ बाकी था अभी भी. तो कुछ कुछ अभी भी होता है. जो आपका ये इनिशिएटिव है वो सच में कमाल का है. मुझे लगता है हम सबके अंदर ना हमेशा के लिए आप जो किसी से प्यार करते हैं ये कुछ अभी भी होता है, जिंदा रहता है, चाहे वो आप छोड़कर कहीं पे भी मूव कर जाओ. और मैं इससे समझ गया कि जो चीज मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना, बस ये दुआ करता हूँ. और आप हमें अपने आप को हमेशा इवेलुएट कीजिए कुछ भी ऐसा स्टेप लेने से पहले और आप जैसे लोगों से गाइडेंस मिल जाए टाइम पर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा खतरा होगा या ऐसा कोई खतरनाक स्टेप कोई उठाएगा.
2: थैंक यू सो मच. और आपने यू नो आगे आकर अपनी ये स्टोरी बताई एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टोरी टू टॉक अबाउट, उसके लिए
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: एंड आई होप अब जब आप वापस अपनी पहली शादी में एकदम अलाइंड हैं, एवरीथिंग इज गॉर्जियस, आई होप यू हैव इयर्स एंड इयर्स ऑफ ब्यूटिफुल टुगेदरनेस. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच माई लव, यू आर सो अमेजिंग. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह यू हैव अ कन्फेशन टू मेक, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. बातें करते हैं ना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा मज़े फ़नी वाले मज़े यू नो हंसी वाले मज़े अपने डेट्स पर किए हैं जो रोमांटिक कम और एडवेंचरस ज़्यादा होते हैं. सो मी एंड दिस गाय वी वर लाइक कि चल गोवा चलते हैं वेकेशन करने के लिए. तब हमारा कोई सीन भी नहीं था, हम अच्छे दोस्त थे बट फिगर आउट कर रहे थे कि क्या हम डेट कर सकते हैं. गोवा पहुँचते हैं, ठीक है, और मेरा सीन ये कि गोवा में मुझे आई डोंट नो हाउ टू राइड अ स्कूटी और ड्राइव अ कार. I know, it's a life skill and all of that, जो मुझे नहीं आता है. तो मैंने इस बंदे को कहा कि ठीक है यार स्कूटी लेके घूमेंगे बागा से कैलंगूट, कैलंगूट से आरंबोल. तो वो मुझे देखे कहता है कि यार मुझे गाड़ी चलानी आती है, स्कूटी तो नहीं हो पाएगा. तो आई सेड कि नहीं नहीं नहीं, जाएंगे तो स्कूटी पे जाएंगे. भैया उसने स्कूटी चलानी सीख ली इन द फर्स्ट 10 मिनट्स जिसने हमें स्कूटी रेंट की थी. बट द प्रॉब्लम वॉज उस बंदे को स्कूटी मोड़नी नहीं आई. तो आप इमेजिन करो बागा से आरंबोल कम से कम नहीं तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है. जितनी बार हमें यू टर्न लेना होता था या हमें लेफ्ट राइट जाना होता था वो मुझे स्कूटी से उतारता था, फिर वो स्कूटी लेफ्ट लेता था, राइट लेता था या यू टर्न लेता था, फिर मैं स्कूटी पे चढ़ती थी. और 1.5 घंटे का रास्ता हमने 2.5 घंटे में पूरा किया है. बट इट वॉज सो हिलेरियस, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. तो अब मेरा ऑब्वियस आपसे सवाल ये है कि क्या मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसे बहुत मज़े आते हैं ऐसी वाहियात डेट्स पर, या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ, then you're my kind of person, maybe even my soulmate. Hit me up with your story, Morning Glory, Insta par ya FB par, and let's get talking about it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So now go ahead and do whatever you have to do, lekin kahin mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mitchie. R-O-C-H-I-E.
1: Roshi, Roshi.
2: Mitchie Roshi.
3: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: मैं फर्स्ट डेट पर जा रहा हूँ एंड आई नो दैट यू गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट. लेकिन अगर कोई टॉप थ्री रूल्स हैं जो मुझे फॉलो करने चाहिए टू बी लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द फर्स्ट डेट, तो वो क्या टॉप तीन चीजें होंगी?
2: रोशी के डीएम से
4: अधिराज ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा है ना, आई लाइक हाउ यू हैव गिवन मी लाइक यू नो एक लिस्टिकल, बताओ कि ये तीन पॉइंट्स क्या हैं. अब क्योंकि आपने मांगे तो मैं दूंगी भी. नंबर वन, आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज डोंट रिवॉल्व द डेट अराउंड योरसेल्फ. अपने बारे में बात मत करो, उसके बारे में इंटरेस्टेड लगो. आस्क हर क्वेश्चंस व्हिच अदर पीपल वुडंट हैव आस्क्ड. आपको ऑटोमेटिकली बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे. नंबर टू, क्रिएट मिस्ट्री अबाउट योरसेल्फ. मतलब कुछ अपने बारे में ऐसी चीजें शेयर करो जो अनयूजुअल हैं. जैसे मान लीजिए यू प्ले द ड्रम्स, और जब आप छोटे थे तब आप बहुत पोएट्री लिखते थे, अब नहीं लिखते हो, सो यू कांट शेयर इट राइट नाउ बट यू विल शेयर इट ऑन द सेकेंड और थर्ड डेट. तो आपने अपने आप को काफ़ी मिस्टीरियसली पोर्ट्रे कर दिया. नंबर थ्री, वेयर सम काइंड ऑफ रेड. अब वो रेड आपके स्नीकर्स में हो सकता है, वो रेड आपके लैपटॉप बैग में हो सकता है, जो भी, क्योंकि रेड अकॉर्डिंग टू कलर थेरेपी इज सच अ कलर दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू लुक अट्रैक्टिव. I hope that this works for you, Adhiraj, my darling. You seem like quite a dominating kind of person. I like that about you. और अगर अधिराज की तरह आपकी भी जिंदगी में कोई सवाल है और आप चाहते हो रोशी गिव मी थ्री टिप्स ब्रो, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपकी मदद करना और आपसे मोहब्बत करना. सो व्हाइल यू फाइंड मी ऑन द ग्राम या FB, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

जो दुनिया में लव बाइट वाली सिचुएशन है ना, ये काफी chaotic है. इफ समवन गिव्स यू अ लव बाइट ऑन योर नेक, तब भी आपके मम्मी पापा को पता है कि आप कहाँ से होकर आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो. लेकिन इमेजिन करो कि यही लव बाइट आपके अपर लिप पर हो. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू योर पेरेंट्स? सो मेरी बेस्टी की मॉम केम टू विजिट हर अभी रिसेंटली फ्रॉम हर होम टाउन, और बेस्टी ऐसे नीचे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में मेकआउट कर रही है. ऊपर आती है, शी हैज लाइक चेक्ड हर नेक एंड एवरीथिंग, नेक पर कुछ निशान नहीं है, तो चिल कर रही है. सडनली उसकी मॉम उसे देखे कहती, बेटे तेरे अपर लिप पर क्या हुआ, ये ऐसे पर्पल पर्पल निशान क्या हो रहा है? एंड मम्मी ऐसे ना उसे बहुत घूर के देख रही है, एंड शी रियलाइजेस की ओ माई गॉड, आई एक्चुअली हैव अ हिकी ऑन माई अपर लिप. बट उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड सोचो, शी टर्न अराउंड लुक्ड एट हर मॉम एंड सेड, मम्मा मैं ना अभी दरवाजा खोल रही थी गाड़ी का और दरवाजा सीधा मेरे मुंह पे लगा, पता इतनी जोर से, आई डिडंट रियलाइज इस पे निशान पड़ गया है. और आंटी ने ये बात मान भी ली. अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी बेस्टी की तरह आप कभी पकड़े गए हो विद लाइक अ लव बाइट और एनी सच थिंग, और आपने किस तरह का झूठ बोला टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट? टू टेल मी द आंसर टू ऑल ऑफ दैट एंड अबव, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर, लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड व्हाइल यू फाइंड मी ऑन सोशल मीडिया, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कन्फेशन टाइम. ओके, जब भी मैं जिंदगी में आई इवन स्लाइटली हैव अ मूड टू गेट नॉटी या फिर वट एवर, ठीक है, अगर मैं रोमांटिक फील करना चाहती हूँ, से मैं किताब पढ़ी हूँ, एज सिंपल इज दैट, तो भी मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत है. अगर मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही लाइक यमी एंड स्लो एंड सैक्सोफोनी है, देन आई विल गेट इन द मूड फॉर रोमांस एंड लव रियली क्विकली. लेकिन अगर मेरे पास म्यूजिक की कमी है, देन मेरे लिए ऑनेस्टली लाइक टू गेट इन द मूड काफ़ी मुश्किल लगता है. मतलब मेरा ब्रेन डिपेंड करता है गाने सुनने के लिए बिफोर इट गेट्स इन द मूड फॉर लव. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए भी म्यूजिक ज़्यादा ज़रूरी है, या यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके लिए क्लेनलीनेस ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर अ गुड स्मेलिंग पार्टनर इज इम्पॉर्टेंट, या फिर कैंडल्स आर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आई रियलाइज दैट टू गेट इन द मूड फॉर लव और टू गेट इन द मूड फॉर मेकिंग लव, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो पहले फुलफिल हो जाए तो और ज़्यादा आनंद आता है. और अगर आपके पास ऐसे अजीबोगरीब क्राइटेरिया है विच डज नॉट इंक्लूड म्यूजिक, और मे बी इट डज, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई प्रॉमिस यू देर इज नो जजमेंट हियर. सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बचपन में मैं पढ़ा करती थी दैट फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. फिर मैंने आपकी जितनी भी अमेजिंग कन्फेशन थी वो सुनी एंड देन आई रियलाइज इट्स एक्चुअली ट्रू. फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: यू गेस्ड इट, आपका फिक्शन से ज्यादा स्ट्रेंज फैक्ट शेयर करने का टाइम आ गया. सो इफ यू हैव अ क्रेजी कन्फेशन, व्हाई डोंट यू मेक इट राइट नाउ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. व्हाट्स योर स्टोरी, मॉर्निंग ग्लोरी?
4: हाय रुचि, एक्चुअली थैंक यू कि मौका दिया आपने मुझे अपने शो पर आने का. तो जैसा मैंने लिखा था कि ये कोरोना टाइम का वक्त है जब चारों तरफ कोरोना था और मुझे भी कोरोना हो गया था. सो आई वाज आइसोलेटेड इन माय रूम फॉर मोर देन अ मंथ टू प्रोटेक्ट माय फैमिली. सो आई हैव माय वाइफ एंड टू किड्स. तो उस समय ऐसा हो गया था कि आई वाज अनेबल टू स्पीक टू माय फ्रेंड्स, नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू स्पीक टू मी मच एंड आई वाज सर्फिंग ऑन नेट एंड ऑल. सो आई थॉट आई विल मेक एन आईडी ऑन अ मैट्रिमोनियल साइट. सो आई मेड एन आईडी ऑफ अ डिवोर्सी एंड आई एक्चुअली थोड़ा सा मैंने फिशिंग किया और एक और बंदी मुझे डिवोर्सी मिल गई. तो मुझे चैट शुरू हुई. एक्चुअली मैंने पहले जो ना इसको किया था वो इसलिए नहीं किया था कि आई वॉन्टेड टू एक्ट लाइक दैट. आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम चैट बिकॉज कोई मुझसे बात नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी वाइफ से भी बात नहीं कर पाता क्योंकि जाहिर सी बात है उसको टेंशन होती है, जो भी होता वो अपनी परेशान थी और मेरे दोस्त भी बहुत ज्यादा नहीं थे मेरे करीब. तो मैंने कहा चलो चैट वेट करते हैं ऐसे जस्ट फॉर फन, मतलब उसमें ऐसा कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं था. देन चैट होती रही, एक बंदी थी उससे मेरी बात होने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा. एंड देन पता नहीं अचानक वो क्या था

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is also तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man Brand New Day, but I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यार ब्रेकफास्ट खा लिया, अच्छा लंच खा लिया, अच्छा सुन डिनर खा लिया. ये ना मेरे बारे में एक बहुत गंदी आदत है, मैं अपने सारे रिलेशनशिप्स में बिल्कुल ही लाइक मम्मी रूप धारण कर लेती हूँ. एंड आई गेट सो कंसर्न्ड अबाउट माय बाबू शोना कोट एंड कोट ईटिंग और नॉट ईटिंग. बट आई रियलाइज दिस इन द लॉन्ग रन यार, कि बंदों को नहीं अच्छा लगता है जब बंदियाँ उनके पीछे पड़ी रहती है ना कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया. अरे यार इतने साल तुम्हें डेट करने से पहले भी तो बंदा खाना खा रहा था, जी रहा था, मरा नहीं, तभी तो तुम्हें डेट कर रहा है. आई थिंक वुमेन लाइक मी, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी एक बैक स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना हमें पता नहीं चलता कब हम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मम्मी या पापा का रोल अडॉप्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप में. वहाँ से ऑनेस्टली रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ डाउनहिल जाता है. आस्क मी, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई माई रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट इज बिकॉज मैं कुछ ज़्यादा ही यू नो रिस्पॉन्सिबल और केयर टेकिंग पार्टनर बन गई थी रिलेशनशिप में. हमने बस मज़े करने बंद कर दिए थे. तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप मज़े कम और मम्मी या डैडी रोल ज़्यादा निभा रहे हो ना,

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: द शो स्टार्ट्स इन
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट एक नई कहानी लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। You got toxic, you got आवारापन, you got बटवारा 1947। तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन एंड आई एम सुरेन सुंदरम
0: नंबर 20।

0: A banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai Aankhon Se Tune Ye Kya Keh Diya. एक ऐसे गाने का रीमेक, इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। This is आंखों से तूने क्या कह दिया from भाई तेरा स्टार है, starring राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: you wanna play? Fall in line, little boy. Cause you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Burke is goodbye. Get your last wish, baby. Cause you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think you know, like mere senior hai, but he's the only one I feel. And main har jagah aisa bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance, main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर 9।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है, उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडर रेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा, वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माई ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ, तू है।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है. फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ

ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है अब ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार, जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर वन।

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। अंटिल देन सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot.
2: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
3: Hi, my name is Peter Parker.
4: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
5: Spiders have three life cycles.
4: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
2: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: अच्छा, पहली मुलाकात कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट।
1: पुरानी जीन्स
0: पे हाय, दिस इज मी श्रेया। पहली मुलाकात है तुम्हारी और मेरी, बट आई प्रॉमिस कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है उस जमाने के गाने। तो उस जमाने के गानों के साथ उस जमाने की बातें भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार कोई इंटरव्यू देते हो, पहली बार कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, या जिंदगी में पहली बार जब जब जो जो होता है ना, वो बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी कुछ गाने सुन करके वापस आओ। आज मैं बताऊंगी जब पहली बार बड़े बड़े रेट्रो स्टार्स ने, उस जमाने के एक्टर्स ने कैमरा जब फेस किया तो उनके साथ क्या हुआ। जैसे कि जब अमित जी ने ये अभी नहीं, ये गानों के उस पार। So come right back only on Purani Jeans.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ और ये आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की पहली फिल्मों की बात की जाए जब दे फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता है इनको अपनी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। तो क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मैंने सोचा कि क्यों ना वो दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करें जिन्होंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ। पता है अमित जी को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे और वो भी काफी नेगोशिएशन के बाद विद टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, इसके लिए उन्हें पूरे 5,000 रुपए मिले और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, मूवी चाहे साल भर में बने या 5 साल में बने और उस 5 साल के अंदर चाहे अमित जी जितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाएं, पर सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अपने धर्मपा जी की पहली कौन सी फिल्म थी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना। वापस आओ गाने सुन करके। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

धर्म पाजी के साथ पता है इस फिल्म में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था। और क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात करें जिनसे पहली बार बड़े बड़े एक्टर्स ने, दिग्गज एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सो धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये फिल्म आई थी और उनके ऑपोजिट इस फिल्म में थी यस्टरडेज़ की एक्ट्रेस कुमकुम जी। तो धर्म पाजी ने उस टाइम पे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, इंटरव्यू में ये बोला था दैट ही विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू कुमकुम जी, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। धर्म पाजी एक न्यू फेस थे और जितनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो ऐसे हुई थी धर्म पाजी की शुरुआत। अच्छा, और अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए धर्म पाजी को कितने सारे रुपए या फिर कितने से रुपए मिले, ये अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

सत्रह सत्रह सत्रह और तीनों का मिलाकर के 51। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि हमारे जो दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना हिंदी सिनेमा के, उनकी भी पहली पहली फिल्मों की बात करूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। आपको पता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे? वेल, ओनली रुपीज 51, 51 रुपए। और ये भी किसी एक बंदे ने नहीं दिया था, इस फिल्म के तीन प्रोड्यूसर्स थे और उन तीनों ने मिलके 17 17 17 रुपए कंट्रीब्यूट करके धर्मपाजी की फीस निकाली थी। ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद एक रियलिटी शो में हाल ही में बताया था। सोचो 51 रुपीज, दैट्स इट। पुरानी जीन्स पर काका यानी राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की वजह से जतिन खन्ना बने राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन मूवीज की बात की जाए जिससे अपना डेब्यू यानी पहली बार कैमरा फेस किया था हमारे दिग्गज रेट्रो स्टार्स ने। तो ये फिल्म थी जिससे जतिन खन्ना हमें आज राजेश खन्ना और प्यार से उन्हें काका कहते थे सब इन दी इंडस्ट्री, काका मिले थे। इस फिल्म का नाम है आखिरी खत जिससे अपना डेब्यू किया था राजेश खन्ना जी ने। अच्छा, अब उन्होंने अपना ये नाम क्यों बदला, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था। वो क्या था इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ना ऐसे आपको सस्पेंस में छोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ पूरी कहानी ऑफ दिस नेम चेंज मेरे यानी श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाँ, तो मैं बता रही थी कि कैसे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए अपनी डेब्यू फिल्म से, यानी आखिरी खत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब राजेश खन्ना लॉन्च होने वाले थे इसी फिल्म से, उसके कुछ महीने पहले एक और जतिन खन्ना नाम के हीरो ने अपना डेब्यू किया था विद द फिल्म कॉल्ड जब जब फूल खिले। अब ये वाले जतिन खन्ना को लगा कि भाई सेम नाम तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक स्क्रीन नेम रखा। वो स्क्रीन नेम था राजेश। लेकिन वो सिर्फ राजेश के नाम से फेमस नहीं हुए, प्यार से तो इंडस्ट्री में काम करते हैं। देव साहब का डेब्यू कौन सी फिल्म से हुआ था? ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक वादा भी आया। ये पूरी कहानी बस कुछ गानों के उस पार। पुरानी जींस पर, मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

Union, Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव साहब की इस डेब्यू फिल्म से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी, दोस्ती बिटवीन हिम एंड गुरुदत्त साहब। हाय, मेरा नाम है श्रेया और पुरानी जींस पे आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहली मुलाकात को थोड़ा और खास बनाएं, कुछ ऐसी फिल्मों की बात करें जिससे हमारे रेट्रो स्टार्स ने अपना डेब्यू किया था। तो फिर इस लिस्ट में देव साहब का नाम तो आएगा ही। देव साहब की पहली फिल्म का नाम था हम एक हैं। देव साहब कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक वादा भी लेकर के आई जिसको बहुत सच्चाई के साथ देव साहब ने निभाया। ये वादा क्या था आपको तो पता ही है, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। तो उस जमाने के कुछ हैंडपिक गाने हैं, उनको सुन करके वापस आओ, फिर पूरी कहानी। आई प्रोमिस। यू आर लिस्निंग टू पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: अभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
2: पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
3: Hi, my name is Peter Parker.
4: Oh, Kaden, Spider-Man Brand New Day aa gayi hai, and for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you, kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain, especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers, unka pyar, unka gussa, wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers. Film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
5: Spiders have three life cycles.
4: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
2: साथ जीतूराज. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव साहब की पहली फिल्म से ही एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उनके आखिरी समय तक चली। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बातें की जाए जिससे हमारे उस जमाने के दिग्गज स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। अब अगर देव आनंद जी की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म थी हम एक हैं। अब इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और साथ में एक वादा आता है। वादा ये कि अगर कभी देव साहब आगे चल करके बड़े एक्टर बने और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसके अंडर जो फिल्में बनेंगी उसको डायरेक्ट करने वाले होंगे गुरुदत्त साहब और एक्टिंग करने वाले देव साहब। ये वादा आगे चल करके देव साहब ने निभाया भी। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ना नवकेतन फिल्म्स, उसके अंडर फिल्म बनी 1951 में बाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले उनके दोस्त गुरुदत्त साहब बने। इंडस्ट्री में ऐसी भी दोस्ती होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

शमी कपूर साहब मधुबाला जी की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस थे कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। और क्योंकि मैं आज आपको पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात की जाए जिससे पहली बार कैमरा फेस किया हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स ने। तो शमी साहब की पहली साइंड फिल्म जो थी ना, वो थी जीवन ज्योति। लेकिन रेल का डिब्बा वो फिल्म थी जिससे पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग जीवन ज्योति से पहले शुरू हो गई। अब रेल का डिब्बा में ना वो ऑपोजिट मधुबाला थे, और मधुबाला जी की खूबसूरती के बारे में अगर मैं कुछ कह दूं तो भाई, तो क्या कहते हैं कि दिए को रोशनी दिखाने जैसा कुछ हो जाएगा। शमी साहब वो सो स्मिटन बाय मधुबाला जी इस ब्यूटी कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। फिर मधुबाला जी उनके पास जाती थी, उनको कंफर्टेबल करती थी, दोस्ती की कुछ लाइनें बोलती थी, तब जा करके रेल का डिब्बा शूट हो पाई। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं अगर मधुबाला जी आंखों के सामने दिख जाती तो क्या हाल होता ना आपका और मेरा। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एज राइटर्स जब इनकी पहली फिल्म थी उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सिनेमा के कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहली फिल्म, पहली पहली राइटिंग, पहली पहली कहानियां, इनके बारे में बात करूँ। सलीम जावेद, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज आई है विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है द एंग्री यंग मैन। इस सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बताया कि कैसे उनके पीक टाइम पे, जब उनकी सारी लिखी हुई फिल्म्स हिट हो रही थी, फिर चाहे वो शोले हो, जंजीर हो, हाथी मेरे साथी हो एंड सो मेनी ऑफ देम, दीवार हो, तब उन्हें फिल्म के एक्टर से ज्यादा यानी अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी से ज्यादा पैसे मिलते थे। 21 लाख रुपए वे बैक इन 70s और 80s। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी वो एक भूत की कहानी थी, इट वॉज अ गोस्ट स्टोरी, और उसके लिए इन दोनों को 5,000 रुपए मिले थे, यानी 2500 जावेद साहब के और 2500 सलीम साहब के। वहां से 21 लाख तक का सफर विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स काफी क्विक और थ्रिलिंग था। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ। और किसके डेब्यू की कहानी बताऊंगी ये तो अभी नहीं, गानों के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शादी की पहली रात का ये गिफ्ट था, पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गाने और इस जमाने की श्रेया के साथ। आज पहली बार मिल रही हूँ आपको, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहले चेक्स, पहले पहले सैलरीज के बारे में बात करूं। तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनकी ये पहली सैलरी नहीं थी, लेकिन शादी की पहली रात खूबसूरत मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही ने उनको शादी की रात कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और वो तोहफा तुम्हारी खूबसूरती पे बनी एक फिल्म होगी। ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए, लेकिन कमाल अमरोही ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीना कुमारी पे बनाई पाकीज़ा, जिसे हर कोई आज भी याद करता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have free life cycle.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot.
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

खराब दो झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक बाकी बातें पीने बाद

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स, यू वर लिस्निंग टू श्रेया और अब जाने का टाइम हो गया है। मैंने सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी ना तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, तो चलो मेरी गाड़ी में बैठो एंड लेट्स हिट द हाईवे। सो इस हाईवे पे हम एक खास गाना कुछ खास लोगों के लिए सुनते हुए जाएंगे। तो ये हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो किसी से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो ऑर्गेनिकली कुछ वाइब आती है, एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, बिना कहे भी कुछ इमोशंस एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर जब वो जाने लगते हैं ना तो आपका दिल कहता है
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे कसम लौट
0: तो ये गाना आपके लिए, और कसम देने की जरूरत नहीं है, मैं कल लौट आऊंगी। फेसबुक और इंस्टा पे मुझे ढूंढ सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो कल मिलते हैं फिर से, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ਸਖਤ ਹੈ।
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain, especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeeturaj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब कोई बार बार आपका मजाक उड़ाए और उसके शब्दों या एक्शन से आपको बार बार तकलीफ हो, तो ऐसी सिचुएशन को इमोशनली मैच्योर तरीके से कैसे हैंडल करें, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, आपने जो कहा कि भाई जो मजाक उड़ा रहे हैं उनकी बात तो आपने कह दी, वो तो बशीर बद्र साहब ने कमाल की एक बात कही थी। वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो उनका काम है, वो कर रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब मेरी जो दोस्त है जिस पे मजाक हो रहा है, जो परेशान हो रही है, उसको मैं क्या कहूँगी?
4: वो मजाक बना सकते हैं पर हर्ट आपकी दोस्त क्रिएट कर रही है।
3: रिपीट करके उसको,
4: उससे आइडेंटिफाई करके, रिपीट करके, या यही सोचकर ये ऐसा क्यों करते हैं, ये मजाक क्यों बनाते हैं, ये बदलते क्यों नहीं है, कितनी बार तो कहा है, इतना टॉक्सिक क्यों है, तो वो चीज ज्यादा हर्ट क्रिएट कर रही है। इससे तो उस चीज को लेट गो करना, फुल स्टॉप लगाना, जाने देना। आप समझ गए उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप इनफैक्ट अपने को इतना स्ट्रांग बना ले कि उनकी बातें आपको अफेक्ट ही नहीं करे, उसका प्रभाव ही नहीं पड़े। वो हम कर सकते हैं। जैसे हम फिजिकली जितना स्ट्रांग होते जाते हैं तो उतना हमारे ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर आप 10 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर 20 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतनी वो आपके लिए ईजी होती जाती है। ऐसे आप जितना अपने को इमोशनली स्ट्रांग बनाते जाएंगे, किसी का मजाक, किसी की निंदा, किसी का इंसल्ट, किसी की कोई बात, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं
3: पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है सिस्टर, इस वजह से आपको लगता है कि मैं इन्फीरियर हूँ अगर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ऑफिस में आम चलन है कि भैया एक बंदे को विक्टिम बना लिया था कि इस पे तो कोई भी जोक क्रैक कर सकता, उस बंदे को लगने लगता है कि शायद मैं इन्फीरियर हूँ, मुझ में कोई बात ही नहीं है, सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
4: इसीलिए तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो ट्रिगर करता है आपके अंदर। कोई इन्फीरियर समझता है, कोई धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। टू अ स्मॉल थिंग लाइक कि इसकी चलन ऐसी है, ये ड्रेसअप ऐसे होता है, इसके बोलने का ऐसा तरीका है, एंड समटाइम्स पीपल ट्राई टू प्ले वेरी स्ट्रांग ऑल्सो।
3: हाँ बिल्कुल,
4: वो बाहर हंसते हैं, बाहर
3: अंदर वो कुड़ रहे होते,
4: अंदर बहुत दुखी होते हैं।
3: ऐसा इंसान जिसपे सब हंस रहे हैं और जिसको धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है,
4: इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने क्रिएट किया है।
3: बिल्कुल, तो अब उसको अपने आप को क्या बोल के थोड़ा पावरफुल महसूस हो, पहला स्टेप ले, तब तो आगे बढ़ेगा।
4: उसको अपने को ये कहना है कि आई डोंट हैव टू जज माईसेल्फ बेस्ड ऑन हाउ पीपल आर जजिंग मी,
3: हाउ अदर पीपल मेक मी फील, राइट।
4: आई एम नॉट परफेक्ट, देखो ये भी है, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, बट एट द सेम टाइम आप मुझे जैसे देखें मैं वैसे अपने को देखने लगूं, फिर ये कैसे मुझे देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए ना। जैसे एक डायमंड है, वो किसी को पत्थर भी लग सकता है।
3: हाँ सही बात है,
4: लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि ये डायमंड है, तो मेरे को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए।
3: बहुत बढ़िया बात,
4: सेल्फ वर्थ, बहुत सुंदर बात आप कलील गिब्रान के पहले भी कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्टॉप हेटिंग योर एनिमी। गॉड टोल्ड मी वन, स्टॉप हेटिंग योर एनिमी, एंड आई ओबेड एंड आई स्टॉप्ड हेटिंग माई सेल्फ।
3: अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस।
4: So most of the time it is not how people are behaving with me.
3: How am I behaving with myself?
4: क्योंकि हम अपने को बहुत रिजेक्ट करते हैं, तो वो सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बहुत जरूरी।
3: आपने मुझे एलेनोर रूजवेल्ट की बात याद दिलाती, वो रूजवेल्ट की वाइफ थी, अमेरिकन, एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर परमिशन।
4: Yeah, absolutely.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: मजाक ही तो था, क्या इतना कह देने से किसी की फीलिंग्स को नजरअंदाज किया जा सकता है? आइए इस बात को समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, एक मेरी महिला दोस्त है, उनसे मैं मिला तो वो मुझे एक किस्सा बता रही थी जिसका शीर्षक मैंने डिसाइड किया मजाक ही तो था, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है। तो बता रही थी कि कैसे उनके साथ कई बार ऑफिस में ऐसा होता है कि सब हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं, और धीरे धीरे सडनली कॉन्वर्सेशन आप पे आता है, जोक आप पे है, तो आपको चुपता है। और जैसे उनका चेहरा उतर जाता है तो आसपास उनके जो बॉस है, लीडर, बोलते हैं अरे क्या हुआ, इतना बुरा मानने की जरूरत है, मजाक ही तो था यार, कम ऑन। और जब आपका चेहरा उतरा हुआ ही रहता है तो फिर कमेंट्स आते हैं इधर उधर से, ग्रो अप यार, ट्राई टू टेक अ जोक,
4: सेंसिटिव नहीं होना चाहिए।
3: हाँ, इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है। तो मुझे बोल रही थी कि प्रॉब्लम मजाक का नहीं है, प्रॉब्लम वो 2 सेकंड में बात खत्म हो जाती है, लेकिन 2 दिन तक फिर मेरे दिमाग में चलता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, और रोज ही मेरा मजाक बनता है, अब इसको स्टॉप कैसे करना है।
4: मजाक करने वाले को तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। वैसे बोल हमेशा वो होने चाहिए जो दूसरों को सुख दे।
3: जी,
4: वर्ड्स हैव पावर। आप किसी को ब्रेक कर सकते हैं, आप किसी को एम्पावर कर सकते हैं, वर्ड्स में बहुत शक्ति होती
3: है। बिल्कुल।
4: तो कोई भी शब्द हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो किसी को दुख पहुंचे।
3: सही।
4: रमणीक होना अच्छी चीज है, चीयरफुल होना, हैप्पी होना,
3: मस्त मौला, हाँ, सही।
4: लेकिन ऐसा ह्यूमर नहीं होना चाहिए जो किसी को दुख
3: दे। सही बात है।
4: ऐसा ह्यूमर जिसमें सब हंस रहे हैं, माना एक योगी के लिए भी कहा जाता है कि उसमें बैलेंस होना चाहिए, रमणीकता भी होनी चाहिए, अंतर्मुखी भी होना चाहिए। केवल अंतर्मुखी भी अच्छा नहीं है, इट इज गुड टू बी, बट एट एन एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल,
3: सही बात नहीं,
4: वो ठीक नहीं है। व्हाट हैपेंस, वो इतना डीप कर्मा है, इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि ऐसे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं तो जो सबको हंसा रहे हैं वो तो कभी भी नहीं दर्द में जाने चाहिए, पर वो बहुत बद्दुआ इकट्ठी कर लेते हैं। जो आपने कहा कि वो फ्रेंड उसको 2 दिन तक नहीं भूल पाती, तो वो हर्ट जो हुई और उसके बाद जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी उसी व्यक्ति को जाएंगे जिसने दुख दिया है। तो इसलिए ये केयरफुल होना चाहिए, ये डीप कार्मिक अकाउंट होता है, नहीं करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Charge Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे एक मूर्ति कई चोट खाने के बाद ही अपना खूबसूरत रूप लेती है, वैसे ही मुश्किलें हमारी पर्सनालिटी को कैसे तराशती हैं। आइए इस बात को गहराई से समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं ऐसे लोगों से जब मिलता हूँ कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें जो भी है वो भी आसान हो जाती हैं। हम यूज्ड टू हो जाते हैं, भगवान की राह पर जब चलते हैं ना तो सब कुछ सही लगता है।
4: हाँ, प्यार में तो वो चीज़ इजी हो जाती है ना, क्योंकि आप सी वो मुश्किल तब तक लगती है, जैसे दुनिया में भी अगर प्यार होता है तो प्यार में सैक्रिफाइस करना, कितनी सारी चीज़ें हम कई बार देखेंगे, अरे बड़े घर में रहते थे छोटे में रहना या कई प्रकार के जो सहन, वो उनको लगता नहीं है, हमें देख करके लगता है इनका लाइफस्टाइल बदल गया, उनको नहीं लगता। क्यों? उनको जो प्राप्ति हो रही है वो उनके स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो परमात्म प्राप्तियाँ हैं, जो बेनिफिट है, इट इज वे मोर देन जो आपको त्याग लगता है। तो इसलिए जर्नी वाले को महसूस नहीं होता, बट डेफिनेटली वो एक युद्ध तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव की, विकारों की, और वो युद्ध तो चलती है। वो युद्ध करते करते, देखो कोई भी मूर्ति बिना ठोके तो बनती नहीं,
3: सही बात,
4: श्रृंगार का समय भी आता है, लेकिन पहले तो ठोका ही जाता है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग, तो क्लेंजिंग होगी तो मैल तो निकलेगी ही।
3: मुझे आपने मिर्जा गालिब की बहुत कमाल की एक कपलेट है वो याद दिला दी कि रंज से खुगर हुआ इंसान इतना कि मिट गया रंज, रंज से खुगर हुआ इंसान इतना कि मिट गया रंज, मुश्किलें मुझ पर आई इतनी कि आसान हो गई।
4: स्ट्रेंथ बढ़ाती है ना, क्यों आसान हो गई? हर मुश्किल को अगर आप पॉजिटिवली देखें, अगर आप उसको चैलेंज नहीं देखें, अपॉर्चुनिटी देखें, देखने का नजरिया है, तो कोई आपकी सहन शक्ति बढ़ाएगी, कोई समाने की शक्ति बढ़ाएगी, कोई परख शक्ति बढ़ाएगी, कोई निर्णय शक्ति बढ़ाएंगी, ये सब शक्ति बढ़ाती है। तो जितनी जितनी शक्ति बढ़ती जाएंगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ वहीं पर होगी पर आपको आसान लगेगी, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम फार स्ट्रॉन्गर देन द प्रॉब्लम व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू।
3: सही बात है, उसके लिए शायद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखते हैं कि जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए 10,000-20,000 स्टेप चलना कोई बड़ी बात नहीं।
4: एग्जैक्टली ऐसे ही आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है, जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए वो इतना इजी हो जाता है 10,000 स्टेप चलना, हमें मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, सेम चीज़ है, लेकिन उनको इजी लग रही है, हमें टफ लग रही है। ऐसे ही मेंटल स्ट्रेंथ है, पावर टू टॉलरेट, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू गिव अप, लेट गो, फुल स्टॉप, तो फिर वो इतना आसान हो जाता है। वो किसी का अपमान करते हैं तो उसको इतना फील हो जाता है, वो दूसरे का अपमान करते हैं उसको सुनाई भी नहीं देता, महसूस भी नहीं होता, रियलाइज भी नहीं होता, बिकॉज उस चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ता।
3: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है जगदीश चौहान राजकोट से, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मेरी एक दोस्त की नई शादी हुई है अभी। वो बहुत परेशान है क्योंकि उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना प्यार और ना ही समझ। छोटी बातें भी झगड़े में बदल जाती हैं और अब वो रिश्ता छोड़ने तक का सोच रही है। ऐसे समय में अपनी शांति, सेल्फ रिस्पेक्ट और उम्मीद वो कैसे बनाए रखे?
3: एक्चुअली रिश्तों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, रिश्ते देने के लिए होने चाहिए, मतलब दो इमोशनली स्ट्रांग लोगों को एक साथ आना चाहिए। दो इमोशनली स्ट्रांग लोग जो बिना एक दूसरे के सहारे भी कम्प्लीटली ओके हैं, वो जब रिश्ते में आते हैं तो वो एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनने में मदद करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, दो इमोशनली वीक और खाली लोग एक साथ आते हैं।
2: सही बात है।
3: और जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट में, डिफरेंट तो होने ही है,
2: तो कंट्रीब्यूट करने की जगह वो चाहते ज्यादा उससे।
3: जब चाहेंगे तो वो कंट्रोल करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे तो गुस्सा भी होगा, पोजेसिवनेस भी होगी, ये सब खिंचातान शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फिर वो रिश्ते में दूरी आने लगती है। सो आई वुड सजेस्ट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन वो मेहनत करके अपने को भरने की कोशिश करे हायर सोर्स से। आप ये अंदर में छोड़ दें, कोई इंसान हमें भर नहीं सकता। आज अगर भर रहा है तो सदा नहीं भर सकता। हो सकता है आज वो खुश है, उसके पास देने के लिए कुछ है, कल जैसे उसके जीवन में भी कोई सर्कमस्टेंस आएंगे, पीपल चेंज, देन वी से यू हैव चेंज्ड, बट व्हाट कैन दे डू आल्सो ना। इसलिए ऑल ऑफ अस शुड हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक रिश्ता हम पहले अपने साथ जोड़े इनवर्ड, फिर एक रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़े अपवर्ड, फिर आउटवर्ड आए, तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी नहीं।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मृणाल का एक सवाल आया है कि मेरा एक दोस्त बचपन की गहरी चोट के बाद ठीक हुआ, लेकिन दोबारा वही इमोशनल पेन आने पर उसे लगता है कि ठीक होने से आसान ड्रग्स का सेवन करना है, क्योंकि बाहर निकलते ही फिर वही दर्द सहना पड़ेगा। ऐसी सोच से कैसे बाहर निकले?
3: ड्रग्स का सेवन करना तो एस्केपिज्म है। आप अगर किसी, कोई समझो आपके साथ कुछ गलत होता भी है, किसी ने चीट किया, आप अगर उस इमोशनल दर्द से बाहर आते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके आए हैं। तो उससे फायदा यह है कि कल को सब कुछ तो हमारे अनुसार नहीं होता है।
2: बिल्कुल,
3: कल को दोबारा भी अगर कोई सीन आती है तो आपके पास वो स्ट्रेंथ है उसको फेस करने के लिए, और आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा।
2: सही बात है।
3: बाकी अगर आप सोचे अल्कोहल है, सब्सटेंस है, तो वो तो शट डाउन कर रहे हैं ना। तो शट डाउन करना तो किनारा करना है, एस्केप करना है। कब तक एस्केप करेंगे? 1 साल, 2 साल, 10 साल। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को ही डेवलप करना होता है।
2: सही बात
3: कि दोबारा भी मेरे साथ वो चीज हो। देखो, एक्चुअली होता क्या है, बात खत्म हो जाना बड़ी बात नहीं है। अगर सिर्फ बात का खत्म होने का आप इंतजार करें तो अंदर में डर भी लगेगा।
2: हाँ।
3: कि ये बात दोबारा ना हो जाए,
2: आई तो क्या करेंगे।
3: जरूरी होता है कि अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाएं
2: कि अगर
3: कि दोबारा भी ये बात आ गई तो जैसे पहले मैं हर्ट हुआ था अब नहीं होगा। दिस पर्सन, दिस सीन, दिस सिचुएशन कैन नॉट क्रिएट द सेम इफेक्ट ऑन मी। वो हमारे जीवन का पर्पस होना चाहिए।
2: और नेल्सन मंडेला ने भी इसी तरह की एक बात कही थी, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ डज नॉट लाई इन नेवर फॉलिंग बट टू ऑलवेज गेट अप व्हेन यू फॉल। बार बार सिचुएशन तो आएगी लेकिन आप कैसे उसको हैंडल करेंगे उस पर डिपेंड करता है।
3: जीवन उतार चढ़ाव है। आप सोचिए कि मैं एक बार चढ़ गया, दोबारा उतार नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशन। आप जितना जितना अपने को स्ट्रांग बनाते हैं, उन सिचुएशंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है।
2: सो राइज एवरी टाइम यू फॉल।
3: इसलिए आप देखें, बहुत सारे जो हमारे देवी देवताएं हैं उनको जो आसन दिखाते हैं ना, वो कमल का दिखाते हैं। और भी बहुत सारे फूल हैं, पर कमल आसन क्यों? ब्रह्मा है, कोई भी है, क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता।
2: सही बात है।
3: तो जीवन ऐसी होनी चाहिए, न्यारा प्यारा।
2: हाँ।
3: भले दुख है, सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तन का पेपर, धन का पेपर, पर उस चीज का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है।
2: बहुत बढ़िया।
3: आप स्टेबल हैं, डिटैच्ड हैं, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ आप उसको पार भी कर सकते हैं। इसीलिए वो चीज दिखाई है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। बकुल हैं, वो लिखते हैं कि रोज सुबह नहा धो के तैयार होके बाहर निकलते हैं, तुरंत बाहर की धूल लेयर बाय लेयर कपड़े खराब कर देते हैं। मेडिटेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है, टॉक्सिक वेव्स आदि। सब स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुन के मजा तो बहुत आता है, लेकिन एप्लीकेशन माइनस लेवल पर है।
3: नहीं, ऐसा नहीं है, माइनस लेवल पर नहीं होता है। जैसे आप अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, आप शावर लेते हैं, तो बाहर कितना भी नेगेटिविटी है, पर आप रोज शावर लेते हैं तो आप कम से कम उससे बचे रहते हैं। ज्यादा हो जाता है तो कई लोग दिन में दो बार भी शावर लेते हैं कि आप उसको रिमूव कर दें। अगर आप ले ही नहीं तो
2: अरे बाप रे बाप, लोग आपके आसपास ही नहीं आएंगे।
3: तो लेयर कब चढ़ेगी? जब आप ले ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप डेली सत्संग कर रहे हैं तो आप बहुत लेवल तक अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया बात।
3: पर इसमें क्या होता है, जो उन्होंने एक बात कही है, सुनना एक चीज है, लेकिन सुन करके उसको स्मृति में रखना दूसरी चीज है। बहुत लोग सुनते हैं
2: फिर भूल जाते हैं।
3: हाँ, सुनना एक कर्मेंद्रियों का सुख है। आपने सुना, कुछ अच्छी बातें सुनी, आपको अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिस में लाने के लिए, अब जब वो क्लास पूरी हो गई, आपको स्पिरिचुअल क्लास अटेंड कर रहे थे वो पूरी हो गई, अब आप जब बाहर जाएंगे तो आपको दिन भर अवेयरनेस में रहना पड़ेगा।
2: सही बात।
3: स्मृति से स्वरूप बनेगा, अवेयरनेस से रियलिटी क्रिएट होगी। हम सुन करके पूरा हो जाता है, लेकिन वो चीज अवेयर रहनी है। आप अवेयरनेस में रहेंगे तो फिर वो लेयर इतनी नहीं लगती है, लगेगी तो भी आप उसको रिमूव कर पाएंगे।
2: क्या बात है, वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है या जब वो असली अल्टीमेट ट्रूथ के खोज में निकलता है तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में और शायद आज भी मंदिरें जो हैं, मस्जिद जो हैं, दरगाह जो है, चर्चेज, वो एकदम बाहर पहाड़ों पे, ऊंची ऊंची पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, तो बहुत मुश्किलों के बाद ही इंसान भगवान तक पहुंच पाता है। ये एक तरह से शायद सिग्निफाई करता है इसको। तो जब मुश्किलों का इतना सामना करना पड़ता है उसके बाद ही अल्टीमेट ट्रूथ मिलता है, भगवान ने इतना डिफिकल्ट क्यों बना रखा है इसको?
3: अल्टीमेट ट्रूथ फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली इतनी डिफिकल्टी नहीं है। वो तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मंदिर इसलिए बने क्योंकि वो ऊंची स्थिति का यादगार है। जो भी देवी देवताएं या जो भी हाँ, बिकॉज वो बहुत हाई हैं, तो हमने उनको पेडेस्टल पर बनाने के लिए बहुत ऊंची जगह पर बिठाया। बाकी कोई उसमें आपको कष्ट सहन करके ही वो चीज मिलेगी जो कभी कभी दिखाया जाता है। सी, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पेरेंट ही तो हैं। आप गॉड इज ट्रूथ कहें, जो गॉड है, जो परमात्मा है, तो पेरेंट से मुलाकात करने के लिए कोई इतनी
2: इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए।
3: नहीं, इतना कष्ट उठाने की कोई बात ही नहीं है। कष्ट किसके अंदर है अगर जो चैलेंज है वो है उसके ट्रूथ के पाथ पर चलने की, ट्रूथ तक पहुंचने की नहीं। उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट ट्रूथ इज, पर उस पाथ पर चलने के लिए आपको जैसे एक बाहर की युद्ध होती है, एक अंदर की युद्ध होती है। क्योंकि बहुत समय से आप जो उसका उल्टा है आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, वो कंफर्टेबल है, उससे टेम्पररी बेनिफिट है, तो वो युद्ध, वो जो बैटल है, वो ज्यादा बहुत कश्मोकश जो है। हाँ। कि गुस्सा करें या ना करें, इच्छा रखें या ना रखें। हाँ। संतुष्ट हो या डिजायर्स हो, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो बैटल है, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर अभी फिलहाल तुम ब्लैंकेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट में फंस गए हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। सो व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स, ग्रैबिंग योर कॉफी, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अभी भी पिजामाज में घूम रहे हो, आई हैव गॉट यू। अगले कुछ घंटों में हम मिलकर करने वाले हैं ढेर सारी बॉलीवुड की गपशप, ढेर सारी मस्ती, गुड वाइब्स की बातें, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स, एंड साथ साथ में सुनेंगे मिर्चीदार बैंगर्स। सभी मिर्ची की वाइब्स को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड अभी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। सूरज

0: Priscilla, it's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज 4th ऑगस्ट ने हिस्ट्री में काफी प्लॉट ट्विस्ट दिए हैं। लेट्स फाइंड आउट थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग करके। सबसे पहले चलते हैं 1704 में, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड जिब्राल्टर। फिर आया 1914, ग्रेट ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन जर्मनी आफ्टर बेल्जियम पर इन्वेजन हुआ, और इसी के साथ दुनिया ने वर्ल्ड वॉर वन के अंधेरे चैप्टर में एंट्री मार दी। 1944 में एक बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट डेट, एम्स्टरडेम में फ्रैंक, उनकी फैमिली और दूसरे लोग जो सीक्रेटली हाइड करके रह रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनकी डायरी आज भी होप, करेज एंड ह्यूमैनिटी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। और 1964 में हुआ गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, जिसने वियतनाम वॉर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया। सो देखा हिस्ट्री कितनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ नगेट्स है तो मुझे बताओ, डीएम करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

म्यूजिकल डॉक्टर्स, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। चलो अब देखते हैं कि आज का मौसम क्या कहता है। सबसे पहले गुड न्यूज है कि अगले 24 आवर्स में रेन का चांस ऑलमोस्ट जीरो है, सो अम्ब्रेलास को आज थोड़ा सा पेड लीव मिल सकता है। वैसे लास्ट 24 आवर्स में आसमान ने फुल ऑन परफॉर्मेंस दी है, 69 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है, मतलब क्लाउड्स ने लिटरली ओवर टाइम किया है। अभी टेम्परेचर इज एट 67 डिग्रीज फारेनहाइट, मोस्टली क्लाउडी स्काइज के साथ है, लेकिन फील हो रहा है 68 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास। सुबह 7 बजे के आसपास क्लाउड्स थोड़े से थे और वेदर पार्टी काफी क्लाउडी चल रही थी, जो कि थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है। आज का टेम्परेचर रेंज जो है वो 66 डिग्री से लेकर 84 डिग्री फारेनहाइट तक है और फील्स लाइक टेम्परेचर इज 67 डिग्री से लेकर 85 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। तो अगर आफ्टरनून में लगे कि एसी और चाय दोनों एक साथ चाहिए, डोंट यू वरी, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड, वेदर ही कुछ ऐसा है। और आज का हाई जाने वाला है ऑलमोस्ट कल की तरह ही, कल 86 डिग्री फारेनहाइट था, आज 84 डिग्री फारेनहाइट के आसपास रहने वाला है। तो वेदर भी कॉपी पेस्ट करके आया है आज। फिलहाल सन ग्लासेस अपने साथ में रखो, लेयर के प्लेयर बने रहो, एंड साथ साथ में वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50+++ के साथ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची की वाइब्स के साथ चलते हैं मिर्चीदार बैंगर्स सुनने के लिए। और मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब इस आवर की टॉप 3 अपडेट सुनने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले सेवरल यूजर्स इंक्लूडिंग मेनी पीपल इन इंडिया रिपोर्टेड दैट व्हाट्सएप अकाउंट बीइंग टेंपरेरली प्लेस्ड अंडर रिव्यू विद एक्सेस टू सम फीचर्स रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल एक्टिविटी इज चेक्ड। द रिव्यू मैसेज सेज इट टिपिकली टेक्स अप टू 24 आवर्स, तो फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पर इंडियन अल्ट्रा रनर सोफिया सूफी हैज क्रिएटेड अनदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग एन इनक्रेडिबल 4,167 किलोमीटर्स फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर इन जस्ट 68 days एंड 23 hours. She says she wanted to finish in under 80 days और वो करके भी दिखा दिया है। And lastly, Praveen Nair, social worker, philanthropist and grandmother of New York Mayor Zoran Mamdani has passed away at the age of 94. She also inspired Zoran's 2019 tribute rap Nani. Beyond that, she's co-founded the Salaam Balak Trust, supporting underprivileged street children. Our thoughts are with her family and friends and everyone whose lives she touched. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La
1: fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ
2: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
1: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
1: आराम कर दिया तुम
2: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
4: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो शुरू करते हैं दो स्टोरीज के साथ जो देसी को पक्का स्माइल देकर ही जाएगी। देखो, अगर तुम सुपर हीरो फैन हो, साईफाई लवर हो या फिर हार्डकोर बॉलीवुड बफ हो, तो दिसंबर इज ऑफिशियली गोइंग टू बी अ मूवी मैराथन फॉर यू। शाहरुख खान AKA द किंग खान इज ऑल सेट टू रिलीज ऑन 24th of December, राइट बिटवीन एवेंजर्स डूम्सडे एंड डून पार्ट 3, और साथ में जुमांजी ओपन वर्ल्ड भी। मतलब कि क्रिसमस प्लान्स काफी सिंपल हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन से भरे होंगे कि कौन सी मूवी पहले देखी जाए। अभी से कुछ मूवीज के एडवांस बुकिंग्स चल रही है, वो तुम बुक करा सकते हो। वैसे तुम इनमें से कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो तो मुझे बताओ। उसके पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर सेलिब्रेट हो रहा है स्पार्कल विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस। और अगर तुम्हारे पास कोई भी पुराना किसी भी जगह से खरीदा हुआ गोल्ड रखा है 18 कैरेट एंड अबव, तो उसको ले जाओ, एक्सचेंज कराओ एट 0% डिडक्शन। ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है तनिष्क पर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के थ्रू। और जल्दी से मुझे बताओ इनमें से कौन सी मूवी के लिए तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, या कौन सी वाली पहले देखोगे? शाहरुख खान की किंग, एवेंजर्स डूम्सडे, डून पार्ट 3, या फिर जुमांजी ओपन वर्ल्ड? DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। Stay tuned and stay hot.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alrighty then, आज तुम्हारा स्पेशल डे है. हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. और आज के दिन तुम्हारे साथ बर्थडे गैंग में कौन कौन शामिल है, लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले वीव गॉट द 44th US प्रेसिडेंट बराक ओबामा. एंड रॉयल वाइब्स की बात चली रही है तो इट्स ऑल्सो द बर्थडे ऑफ मेगन मार्कल एंड द लेट क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर. एंड आज के दिन द लेजेंडरी इंडियन सिंगर किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी है. एंड वीव गॉट द ऑस्कर विनिंग एक्टर बिली बॉब थॉर्नटन, ग्रेटा गर्विग एंड ट्विन स्टार्स कोल एंड डिलन स्प्राउस. एंड दैट्स इट फॉर योर हैप्पी बर्थडे शाउट आउट. अगर तुम्हें भी किसी को विश करना है तो तुम मुझे बता सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग. एंड राइट नाउ लेट्स लिसन टू सम मिर्ची दर बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ Energy Mornings. टाइम हो गया है गोल्ड का अपडेटेड रेट जानने का.
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,070 $4,070 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है. लेकिन इस साल गोल्ड $5,600 की पीक एक बार टच कर चुका है और करेक्शन के साथ इस समय 4070 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है. सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए चाहे पैम सर्टिफाइड गोल्ड बार्स हो या सिल्वर बार्स 1 ounce 10 ounce 100 grams किलो बार्स RajJewels.com विजिट करें और गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू
1: Energy Mornings पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है Energy Pris, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 Energy, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और टाइम आ गया है मिर्ची आवो का 3 का, जहाँ पर मिलती है तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड की खबरें सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। सबसे पहले यूएसए क्रिकेटर बोडुगम अखिलेश रेड्डी हैज बीन हैंडेड एन 8-year बैन बाय द आईसीसी आफ्टर इट्स एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मल्टीपल ब्रीचेस रिलेटेड टू द अबुधाबी T10 2025, इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस मैचेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2 पर, अ सिनेमा इन कोलंबिया रिपोर्टेडली हैड टू बी इवैक्यूएटेड ड्यूरिंग अ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्क्रीनिंग आफ्टर एन एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट smell caused audience members to leave the auditorium. And lastly, former Australian fast bowler Brett Lee has finally cleared the air about long-running rumors linking him with Bollywood star Preeti Zinta. Brett says they were and still are great friends, but they never dated. And that's it for Mirchi Avoca 3 for this hour with me, Priscilla. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 6 4 7 2 4. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,39। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. वेलकम टू रांची जोन. देखते हैं आज तुम्हारे सितारे तुम्हें क्या मैसेज भेज रहे हैं.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी कि मेष राशि कॉन्फिडेंस फुल पावर में है. जो काम इम्पॉसिबल लग रहे थे आज उसका फर्स्ट स्टेप लेना पड़ सकता है या ले लोगे. सरप्राइज खुद ही हो जाएगा. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज ऑनेस्टी ही तुम्हारा सुपर पावर है. थोड़ा सा ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन भी आज के दिन के लिए बेटर है. बाद में अरे यार ये तो बताया ही नहीं वाले मोमेंट अवॉइड हो जाएंगे. लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन. लकी नंबर इज 8. जेमिनी यानी मिथुन राशि, गुड न्यूज इज लोडिंग. किसी पुरानी मेहनत का रिवॉर्ड आज मिल सकता है. बस हम्बल रहने का, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने का और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 29. कैंसर यानी कर्क राशि, आज किसी ने तुम्हारी हेल्प की, परफेक्ट. काइंडनेस का रिटर्न गिफ्ट देने का दिन है. गुड कार्मा भी कैशबैक जैसा ही होता है. लकी कलर इज पिंक. लकी नंबर इज 4. लियो यानी कि सिंह राशि, रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा डबल चेक करना बनता है बॉस. एक्साइटमेंट अच्छी बात होती है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लाइफ में हर जगह होते हैं. लकी कलर फॉर यू इज एम्बर. लकी नंबर इज 15. वर्गो यानी कन्या राशि, किसी अपने के एडवाइस इग्नोर मत करना आज के दिन. कभी कभी लाइफ का बेस्ट अपडेट गूगल से नहीं बल्कि घर वालों से मिलता है. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 33. एंड दैट इज राशि जोन नंबर 1 का दी एंड. अगर तुम्हारी राशि अभी नहीं आई है, डोंट गो एनीवेयर. नेक्स्ट जोन में आने वाली है बाकी बची राशियां. बट उसके पहले आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स. और उसके पहले यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ, और चलो कंप्लीट करते हैं बचा हुआ राशि जोन ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, थोड़ा और हासिल, थोड़ा काम प्रोक्रेस्टिनेशन, आउटस्टैंडिंग काम को फिनिश कर लो, फ्यूचर वाला तुमको थैंक यू बोलने आएगा। लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सोलो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आज टीम वर्क ही तुम्हारा सीक्रेट वेपन है, स्क्वाड गोल्स लिटरली। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 6। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, छोटी सी डिसएग्रीमेंट को ब्लॉकबस्टर ड्रामा मत बनने दो यार, डीप ब्रेथ लो, और जरूरत हो तो ग्रेसफुल एग्जिट भी एक टैलेंट होता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 14। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पार्टनरशिप में फेयर प्ले रखो, याद रखो विन वही होती है जहां पर सब स्माइल करें। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 31। अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, ये ट्विस्ट हैप्पी एंडिंग्स की तरफ जा सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ब्लू, लकी नंबर इज 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज अपने लव्ड वंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और रीअश्योरेंस दो, दिल की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमेशा सबसे अच्छा होता है। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 27। एंड दैट वाज इट फॉर राशि जोन पार्ट 2। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। अब जाके चेकआउट करो मेरे सोशल्स, फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Start Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, K-Den, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज Spider-Man ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: साथ Jeeturaj, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मिर्ची फ्रेश माल.
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स, दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: और इसी नोट पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर से मेरे यानी कि प्रिसिला के जाने का टाइम हो गया है शुरू। लेकिन पता है क्या, जाने से पहले मैं तुम्हें एक फील गुड स्टोरी बताऊंगी जिससे आज का दिन थोड़ा और मोटिवेशनल हो जाएगा। तो फ्लोरिडा के नेथन थॉमस ने सिर्फ 18 साल एंड 346 डेज की एज में इंजीनियरिंग प्रोफेसर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इस अचीवमेंट के साथ उन्होंने 306 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है जो कि मैथमेटिशियन कॉलिन मैकलॉरिन के नाम था। और सच बताऊं, कुछ लोग ना 18 इयर्स की एज में आज भी कॉलेज का क्लासरूम ढूंढ रहे होते हैं, इनफैक्ट बाथरूम ढूंढ रहे होते हैं। और नेथन जो है उन्होंने क्लासरूम के फ्रंट में खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। बस ये याद रखना, लाइफ जो है ना वो रेस नहीं है। किसी का माइलस्टोन 18 पर आ जाता है, किसी का 28 पर, किसी का 48 पर और किसी का शायद 78 पर। कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस और हर दिन का एक छोटा सा स्टेप जो कि फ्यूचर को और बड़ी हेडलाइन की तरफ ले जाता है या किसी बड़े मुकाम की तरफ ले जाता है। एंड उससे मुझे याद है मेरा बस स्टॉप तो यहाँ आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स, वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क या फिर कैचिंग द ट्रेन या फिर सिपिंग योर चाय या ऑफिस लॉग इन करते हुए सीक्रेटली मुझे सुन रहे थे या फिर यूं ही तुम्हें गाने पसंद है और मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया। यू मेड माई मॉर्निंग मच मच मच ब्राइटर। एंड अभी लेट्स स्टे कनेक्टेड इवन आफ्टर द माइक गोज ऑफ। फॉलो मी, मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X, and WhatsApp का number है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 44। Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज? पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए। सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुन करके वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो, हाँ जी बोलिए।
5: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
4: आप बोलिए ना।
5: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
4: कॉल मैंने किया है। हेलो,
5: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
4: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
5: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
4: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
5: नींद में है क्या?
4: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
5: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
4: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तरह। हेलो, हाँ बताइए।
5: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दब रहा होगा बार बार।
4: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
5: हेलो,
4: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।
5: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
4: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
5: फोन नहीं कर रहा,
4: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए। मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
5: चप्पल
4: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे। फोन
5: आराम कर दिया तुम जैसे
4: जीना, बता रहा हूँ से भाग। इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ, दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
5: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
4: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। तो अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1972, मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मैंने।
1: ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है। कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं। आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू कि ऑफकोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: मैंने

उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चिढ़ाने के लिए जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवीद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
3: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी,
4: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। He knew it was going to be huge. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियाँ चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1 2

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था, 1994 में आई अंदाज अपना अपना। उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे। और ये वाली जो लाइन थी, तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पाओ उसको, साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने ये डायलॉग लिखा मोगैम्बो खुश हुआ, तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा। शेखर कपूर को ये डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: अरे है ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: करता है।
1: मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उस पे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उस पे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

तो जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुन करके फौरन वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Yeah.

0: भाई गाना पसंद आने के लिए इतने प्रोसेसेस तो नहीं होते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर एंड कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ यार। सो बेसिकली इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुआ जिसको लेके अरिजीत सिंह के कमबैक की भी बात हुई थी। वेल आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, बट फिलहाल अमाल मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनके इस गाने उस एल्बम को लेकर उनके जो राइवल लोग हैं ना वो पेड पीआर कर रहे हैं और उनके गाने को उनके साउंडट्रैक को अटैक कर रहे हैं। बट यार अमाल अगर ये बात सच है तो मेरे पास तो पैसा नहीं आया यार, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये गाना कुछ खास समझ नहीं आया। एंड उससे भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द थिंग जो आपने कहा। सो अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक एवरी सॉन्ग नीड्स टाइम टू ब्रीद। उनके हिसाब से इंसान के सिस्टम तक दिल तक पहुंचने के लिए ना उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ऑडियंस के बीच। बट कसम से जिस दिन ये गाना आया था उस दिन सुना मैंने, उसके बाद 2-3 दिन लगातार सुनने की कोशिश की कि क्या पता अब पसंद आए। बट सॉरी सर, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन इमरान हाशमी एल्बम। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुन रहा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हाय हाय
1: Yeah, Niti Michi. Brighten up your day, we will find a way. On Niti Michi, aha.
2: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन व्हाई नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. दो अल्टीमेट लेवल के डायरेक्टर्स साथ काम कर रहे हैं. इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप की बात कर रही हूँ, बिकॉज दे आर गोना प्रेजेंट अ कमिंग ऑफ एज शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बॉबी ब्यूटी पार्लर, और ये यूट्यूब पे आने वाली है. सो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था दैट दे हैव क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल, नाम है इसका ओ शॉर्ट फ्लिप्स, जिसपे शॉर्ट फिल्में ही आएंगी. एंड टॉकिंग अबाउट बॉबी ब्यूटी पार्लर, ये शॉर्ट फिल्म 6 अगस्त को रात 12 बजे रिलीज की जाएगी. बाकी की रीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. फरहान अख्तर का एग्जिट हो चुका है आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की अपकमिंग प्रोडक्शन ललकारा से, और अब सिद्धांत गुप्ता एज अ लीड एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं. वेल, ये फिल्म एक एम्बिशियस स्पोर्ट्स सागा है जो हिस्टोरिक 1952 इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पे बेस्ड होगी, जो एक्सप्लोर करेगी द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, इंटेंस राइवलरी एंड नेशनल प्राइड. बाकी फिल्म में आमिर खान क्रिकेटिंग लेजेंड लाला अमरनाथ का रोल प्ले करने वाले हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे. फिल्म की शूटिंग मुंबई में 1 अक्टूबर से शुरू होगी. किंग के रिलीज डेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला. शाहरुख खान इज ऑल सेट टू टेक ओवर अवेंजर्स डूम्सडे, जुमानजी एंड ड्यून का पार्ट 3 इन दिसंबर. सो शाहरुख खान की ये फिल्म 24th ऑफ दिसंबर को रिलीज होने वाली है. हाउएवर, स्पेकुलेशंस थे कि भाई क्योंकि 3 इंटरनेशनल मेजर फिल्में उस दिन ही आ रही हैं, इसलिए शायद से इस फिल्म का रिलीज डेट पुश कर दिया जाए. बट रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे स्पेकुलेशंस खारिज कर दिए गए हैं. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैदराबाद से हैं विवेक जी। तो क्या तैयार हैं आप?
3: यस यस।
0: ऑल राइट, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा जाता है, मंदिर का घंटा कौन है?
3: राजपाल यादव।
0: राजपाल यादव किस फिल्म में गुल्लू कैब वाला बने हैं?
3: भागम भाग।
0: भागम भाग में एमजी गांधी किसकी सुटाई करते हैं,
3: किसकी पिटाई करते हैं?
0: हाँ,
3: ये परेश रावल को।
0: परेश रावल किस फिल्म में भगवान के ऊपर केस करते हैं?
3: ओ माई गॉड।
0: ओ माई गॉड में भगवान के लंबे बाल वाले मैनेजर कौन है?
3: मिथुन चक्रवर्ती।
0: मिथुन चक्रवर्ती किस फिल्म में अपने जवानी के प्यार से बुढ़ापे में शादी करते हैं?
3: गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में पप्पी भाई कौन है?
3: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर रोड रोलर किस फिल्म में चलाते हैं?
3: खट्टा मीठा।
0: क्या बात है, खट्टा मीठा में रोड कॉन्ट्रैक्टर कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में नकली अंडरटेकर से लड़ते हैं?
3: खिलाड़ियों का खिलाड़ी।
0: क्या बात है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में मैडम माया कौन है?
3: रेखा।
0: रेखा की फिल्म जिसमें उनका बेटा एलियन से कॉन्टैक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया में चॉकलेट मिल्क किसको पसंद है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक पल का जीना फिर तो है जाना करते हैं?
3: कहो ना प्यार है
0: में सोनिया सक्सेना कौन है?
3: अमीषा पटेल।
0: अमीषा पटेल की फिल्म जिसमें उनको ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
3: गदर।
0: गदर में हैंडपंप कौन उखाड़ता है?
3: सनी देओल।
0: सनी देओल की फिल्म जिसमें वो स्पाई बने हैं?
3: हीरो।
0: क्या बात है, हीरो में एक्चुअल लव किससे होता है उनको?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की लिव इन रिलेशनशिप वाली फिल्म
3: सलाम नमस्ते।
0: सलाम नमस्ते में वो किसके साथ लिव इन में है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में अपनी बेस्टी से प्यार करते हैं?
3: कल होना हो
0: में टर्मिनल इलनेस किसको है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख की फिल्म जिसमें वो अपनी बंदी को बिल्डिंग से धक्का मार देते हैं?
3: बाजीगर।
0: बाजीगर में मरने वाली बंदी की बहन कौन है?
3: काजोल।
0: काजोल किस फिल्म में तुस्सी बड़े मजाकिया हो करती हैं?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: सर कहीं तो रुक जाओ यार, कभी खुशी कभी गम में लड़कों को रेटिंग कौन देता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक छोटी बच्ची को बॉर्डर क्रॉस कराती हैं?
3: बजरंगी भाईजान।
0: बजरंगी भाईजान में मुन्नी को अपनी पीठ पे कौन लेके चलता है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान किस फिल्म में एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते?
3: वांटेड।
0: क्या बात है, आई गेस यू ऑल्सो वॉन्टेड द टैग सो बैड कि एक गो में ही आपने ये गेम कंप्लीट कर लिया। तो इसी बात पे आप बने हैं आज के हमारे
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: वैसे आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को ना फोमो फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम एक बार फिर आएगा कल, बट उसके अलावा दो और गेम्स यहाँ अभी बाकी हैं। मैं हूँ श्रुति आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycles
2: I just

0: लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना.

0: Home Leon, Radio Mercy, New York. It's hot.
1: Yeah. Miki Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Miki Mirchi.
2: खेलो मगर प्यार से
0: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
2: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार. आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, उनको लगाम लगाइए, वापस लाइए. बेसिकली द ड्रिल इज आपको मेरे इंस्टा के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत करती हूँ. और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थी प्रिथा, बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट. और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ हैं पुष्पाल जी. तो सर चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ. अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं.
4: रन.
2: रन की फीमेल लीड
4: भूमिका चावला.
2: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है.
4: या तेरे नाम.
2: तेरे नाम में राधे कौन है.
4: सलमान खान.
2: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच में टॉवल डाल के डांस करते हैं.
4: मुझसे शादी करोगी.
2: मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है.
4: प्रियंका चोपड़ा.
2: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है.
4: फैशन. फैशन.
2: फैशन में एक डायलॉग है इवी वी वी वी वी वी, ये कौन करता है.
4: कंगना रनौत.
2: कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता रह रहा है.
4: तनु वेट्स मनु रिटर्न्स
2: में उनका पति कौन है.
4: आर माधवन.
2: आर माधवन की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है लेकिन उनको फोटोग्राफी पसंद है.
4: थ्री इडियट.
2: थ्री इडियट्स में प्रिंसिपल की बेटी कौन है.
4: करीना कपूर.
2: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है.
4: शाहिद कपूर के साथ है मूवी.
2: हाँ जी.
4: जब वी मेट.
2: एंड द वे वी मेट ओवर हियर ऑन दिस गेम इज अल्टीमेट, इसलिए आपको ये टैग तो जरूर देना है.
0: मिर्ची फिल्म ची.
2: अब देखो इस गेम को सुनने के बाद अगर आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा फोमो में जा रहा है देन वरी नॉट, ये गेम कल फिर से वापस आएगा. राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में है क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दब रहा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
1: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
1: क्यों आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना बता रहा हूँ भाई यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मेन स्ट्रीम मानसून मूवी से अलग हैं ये फिल्में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि यहाँ रेन का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस सोशल डिवाइड, इंटिमेसी, डिजायर, लोनलीनेस एंड जॉय। और आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की अबाउट मानसून वेडिंग, अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट तुम्बाड, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राही अनिल बारवे, जिसमें रेनफॉल को एज अ सिंबल ऑफ मॉरल डीके दिखाया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस फिल्म को देखने की तीन वजह है। पहली, इसका विजुअल वर्ल्ड, हर फ्रेम इतना हॉन्टिंग और सिनेमेटिक है कि लगता है कि आप खुद तुम्बाड की बारिश भरी गलियों में चल रहे हैं। दूसरी, ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये ग्रीड, अम्बिशन और इंसान की कभी ना खत्म होने वाली भूख की कहानी है। और तीसरी, इसका क्लाइमेक्स, ऐसी एंडिंग जो क्रेडिट्स के बाद भी काफी देर तक आपके दिमाग में घूमती रहती है। इन शॉर्ट, तुम्बाड सिर्फ डराती नहीं, सोचने पे भी मजबूर करती है, एंड वही उसे कल्ट भी बनाती है। अ मस्ट वॉच फॉर श्योर। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे बात करते हैं साल 2004 की रिलीज रेनकोट, जहां ऋतुपर्णो घोष ने अपनी इस फिल्म के दोनों प्रोटैगनिस्ट के जो भी रिग्रेट्स हैं उसको लिंक किया है बारिश से। इस फिल्म को देखने की तीन वजह हैं। पहली, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की रिस्ट्रेन्ड हार्टफेल्ट परफॉर्मेंसेस, जहां आंखों ने लफ्जों से ज्यादा बात की है। दूसरी, ऋतुपर्णो घोष की स्टोरी टेलिंग, जो दिखाती है कि कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ चुप हो जाती हैं। और तीसरी, इस फिल्म की बारिश। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है, क्योंकि हर बूंद अधूरी मोहब्बत, पुरानी यादों और उन बातों का बोझ लेकर गिरती है जो दोनों एक्टर्स एक दूसरे से कभी कह ही नहीं पाए। एंड ऑनेस्टली, शायद ये फिल्म देखने के बाद आपको बारिश पहले जैसी फील ना दे। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Not your typical monsoon movie.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम. देखो यार, बारिश और बॉलीवुड से सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में यही आता है. या फॉर दैट मैटर, गीली साड़ियों में नाचती लड़कियां, कोरियोग्राफ्ड नंबर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी मॉनसून मूवीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने बारिश को एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मॉनसून वेडिंग, नंबर दो पे तुम्बाड़, नंबर तीन पे रेनकोट, एंड अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी कौन. ये फिल्म आई थी 1999 में. एंड कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ फिल्में आपको हर इंसान पर शक करना सिखाती हैं. वेल, कौन उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स और लगभग पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर, फिर भी सस्पेंस एक सेकेंड के लिए भी कम नहीं होता. दूसरी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंसेस जो बिना लाउड हुए आपको एज ऑफ योर सीट पर बिठा देती हैं. और तीसरी, इसका ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई असली खतरा था कौन. और इस पूरी कहानी के बीच जिस हिसाब से बारिश और थंडर अपना रोल प्ले करते हैं, दैट ट्रैप्स यू इनसाइड इट्स पैरानोया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे बात करूंगी अबाउट द फिल्म धोबी घाट. मुंबई को अगर किसी फिल्म ने सिर्फ दिखाया नहीं, महसूस करवाया है, तो ये फिल्म है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, मुंबई ऑफ कोर्स, यहाँ शहर सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, फिल्म का एक जिंदा कैरेक्टर है. दूसरी, चार अलग जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और बिल्कुल अलग भी, जस्ट लाइक आवर वेरी ओन मुंबई. और तीसरी, इसकी खामोशी. ये फिल्म डायलॉग से कम और नजरों, तन्हाई और अनसेड इमोशन से ज्यादा बात करती है. और इस फिल्म के जरिए किरण राव बहुत ही खूबसूरती से अर्बन लोनलीनेस को बारिश के साथ पेंट करते हुए दिखाती हैं. तो बताइए, पांच का पंच की मेरी इस लिस्ट में आप कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहोगे? मिर्ची श्रुति के नाम से लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस दैट. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन व्हाई नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। दो अल्टीमेट लेवल के डायरेक्टर्स साथ काम कर रहे हैं, इम्तियाज अली और अनुराग कश्यप की बात कर रही हूँ, बिकॉज दे आर गोना प्रेजेंट अ कमिंग ऑफ एज शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है बॉबी ब्यूटी पार्लर, और ये यूट्यूब पे आने वाली है। सो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था दैट दे हैव क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल, नाम है इसका ओ शॉर्ट फ्लिप्स, जिसपे शॉर्ट फिल्में ही आएंगी। एंड टॉकिंग अबाउट बॉबी ब्यूटी पार्लर, ये शॉर्ट फिल्म 6 अगस्त को रात 12 बजे रिलीज की जाएगी। बाकी की रीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। फरहान अख्तर का एग्जिट हो चुका है आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की अपकमिंग प्रोडक्शन ललकारा से, और अब सिद्धांत गुप्ता एज लीड एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। वेल, ये फिल्म एक एम्बिशियस स्पोर्ट्स सागा है जो हिस्टोरिक 1952 इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पे बेस्ड होगी, जो एक्सप्लोर करेगी द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, इंटेंस राइवलरी एंड नेशनल प्राइड। बाकी फिल्म में आमिर खान क्रिकेटिंग लेजेंड लाला अमरनाथ का रोल प्ले करने वाले हैं, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे। फिल्म की शूटिंग मुंबई में 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किंग के रिलीज डेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। शाहरुख खान इज ऑल सेट टू टेक ओवर अवेंजर्स डूम्सडे, जुमानजी एंड ड्यून का पार्ट 3 इन दिसंबर। सो शाहरुख खान की ये फिल्म 24th ऑफ दिसंबर को रिलीज होने वाली है। हाउएवर, स्पेकुलेशंस थे कि भाई क्योंकि 3 इंटरनेशनल मेजर फिल्में उस दिन ही आ रही हैं, इसलिए शायद से इस फिल्म का रिलीज डेट पुश कर दिया जाए, बट रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे स्पेकुलेशंस खारिज कर दिए गए हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
0: हेलो
1: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
0: वही मैं सुधरा था, मतलब।
1: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
0: हाँ जी।
1: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पैनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पर होता है? ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए, ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ। ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, सबसे अच्छी शायरी ना अक्सर किसी डायरी में नहीं, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और अक्सर लोग फ्रेंडशिप डे पे ना सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे इतना ही लिखकर भेज देते हैं, तो अगर आपने भी इस फ्रेंडशिप डे यही किया है और मन में आया ये ख्याल कि यार थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी, थोड़े और मज़े किए जा सकते थे, तो मौका बिल्कुल नहीं चूका है, क्योंकि आपके लिए आ रही है एक ऐसी शाम जो आप दोस्तों नाम कर सकते हो। जी हाँ, कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड लेकर आ रही है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट, जिसमें होगा लाइव म्यूजिक, शायरी होगी, डांस होगा, डिलीशियस 3-कोर्स डिनर होगा, और सबसे जरूरी दोस्तों के साथ वो यादें होंगी जो सालों तक याद रहेंगी। फ्राइडे अगस्त 7th 7 PM ऑनवर्ड्स रॉयल एल्बर्ट्स पैलेस में। टिकट्स अवेलेबल है sulekha.com पर, या फिर आप जो इनकी ऑर्गेनाइजर है ज्योत्सना शर्मा उनको भी कॉल कर सकते हो 7329972409 7329972409 फॉर स्पेशल डिस्काउंट्स या फिर ग्रुप बुकिंग्स। और मिर्ची लिसनर्स, अगर टिकट्स जीतना चाहते हो तो यार हमें व्हाट्सएप कीजिए एक सिंपल सी शायरी, 2-4 लाइन की पोएम अपने दोस्त के नाम। वैसे बड़ी बड़ी उर्दू की जरूरत नहीं है, बस दिल से होनी चाहिए। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती, अपने शायरी के 2 लाइन, और हमें व्हाट्सएप कीजिए 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे @RJMirchiSiddhi SIDDHI पर भी अपनी शायरी भेज सकते हो। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और दोस्ती को शब्दों में सजा दीजिए। और अब दोस्ती की बात हो ही रही है तो ये अगला गाना दोस्तों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: है दिल
1: तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स आइज थाइज सब गजब सब

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो
3: हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
3: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
3: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
3: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बच जाएगा?
3: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
3: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
3: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
3: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहे हैं सुना आपने?
3: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
3: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो
3: हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
3: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन करते यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा। और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्तों, हर दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इकोनॉमी की इतनी बातें होती है ना कि कभी कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतने सारे सोर्सेस से अपडेट्स इतने सारे मिलते रहते हैं, लेकिन हर अपडेट पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी तो ये समझना है कि वॉट रियली मैटर्स टू अस। तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स में घर भी शामिल है तो आज की बात आपके काम ज़रूर आ सकती है, क्योंकि इतने सारे अपडेट्स और इतने सारे ऊपर नीचे जो मार्केट के हो रहे हैं, व्हाट दैट रियली मींस फॉर होम बायर, ये बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

कभी किसी ट्रेलर को पॉज करके दोबारा देखा है? शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना ट्रेलर से फिल्म आ रही है यही बताता था, लेकिन अब ट्रेलर डिटेक्टिव गेम बन चुका है। मतलब पहले एक फ्रेम देखो, फिर कमेंट्स पढ़ो, और फिर पता चलता है कि लोगों ने उस एक सेकेंड में ना पूरी थियोरी बना दी है। जी हाँ, कि यार यही कैरेक्टर विलन होगा, इस सीन का कनेक्शन पहली वाली फिल्म के साथ था। मुझे तो लगता है बॉलीवुड फैंस से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेलर से ज्यादा एंटरटेनिंग तो यार उसके कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या थे। वैसे आप ट्रेलर देखते हुए किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देते हो? क्या वो म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, एक्शन होता है, या फिर माई फेवरेट कॉमेंट सेक्शन? डीएम मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब ट्रेलर नहीं, सीधा फुल एंटरटेनमेंट। अगला बॉलीवुड गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlló, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

फ्रेंडशिप्स डे पे सबके मैसेजेस आते हैं, लेट्स कैच अप। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन दिक्कत यही है कि यार सब लिख तो देते हैं लेट्स कैच अप, लेकिन वो मिलना हो ही नहीं पाता। तो आपके भी अगर फ्रेंडशिप डे के प्लान का यही हाल हुआ है तो यार इस बार सिर्फ प्लान्स मत बनाओ, उन्हें सच में कंप्लीट भी करो, क्योंकि आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 बाय कल्टिवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड। एक शाम जहां होगी लाइव म्यूजिक, शायरी, डांस और 3 कोर्स डिनर का फुल ऑन कॉम्बिनेशन। मतलब दोस्तों के साथ वो परफेक्ट कॉम्बो जहां फोन से ज्यादा यादें कैप्चर होंगी। तो डेट नोट डाउन कर लो, August 7th शुक्रवार की शाम 7 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ रॉयल अल्बर्ट पैलेस। और इसकी टिकट्स आपको मिलेंगे sulekha.com पर, या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर ज्योत्सना शर्मा को आप कॉल कर सकते हो एट 732-997-2409 732-997-2409। और कॉल जरूर करना, स्पेशली अगर ग्रुप बुकिंग्स है तो बहुत ही अमेजिंगली आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर आपके ग्रुप बुकिंग्स इजीली मैनेजेबल हो जाएंगी। कॉल जरूर करना ज्योत्सना शर्मा या फिर तरुण शर्मा को फ्रॉम कल्टिवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड। और दोस्तों मिर्ची पर एक अनोखा कॉन्टेस्ट, यार आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना उनके लिए 2 या 4 लाइन की एक प्यारी सी शायरी या पोयम आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल, फनी, इमोशनल या फिल्मी, जैसे भी आपकी दोस्ती हो वैसे एक शायरी लिख दो और हमें व्हाट्सएप कर दो ऑन आवर मिर्ची नंबर 9033647244। और आपको बस लिखना है दोस्ती, आपकी प्यारी सी शायरी, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो एट RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI, क्योंकि सबसे दिल को छू लेने वाली एंट्री जीतेगी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो चलिए अब उस दोस्त को याद करते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, और उसी फीलिंग के साथ सुनते हैं ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड ख़त्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बज जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैम्पियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीकेंड में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga.
1: Milci, murga.
2: हेलो, हाँ जी बोलिए।
3: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
2: आप बोलिए ना।
3: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
2: कॉल मैंने किया है। हेलो।
3: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
3: नींद में है क्या?
2: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया, मैं देख रहा हूँ नंबर।
3: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है?
2: आ जाते हैं उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तेरे। हेलो, हाँ बताइए।
3: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दबा होगा बार बार।
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
3: हेलो,
2: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
2: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
3: फोन नहीं कर रहा अभी,
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए, आप समझ गए। मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। हटा, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ
3: मैं। चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन क्यों
3: आराम कर दिया तुम जैसे।
2: जीना बता रहा हूँ यहाँ से, भाग। इस बार अगर कर दिया ना, बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में,
3: फोन आ रहा है, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाजें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो।

0: ये सारी कॉल्स मैंने करी थी.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

अब इसे कहते हैं ना सही मायने में शुभारंभ। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको याद है कि बचपन में मम्मी कोई भी नए काम के लिए जाना हो तो दही चीनी खाए बगैर जाने ही नहीं देती थी, और आइडियली बस शगुन के लिए एक चम्मच दही काफी होता था। लेकिन घर पे बना मलाईदार दही का स्वाद इतना खूब होता था कि हम बच्चे एक कटोरी दही खा जाते थे। और यही रिचुअल यहाँ US में भी जारी है। फर्क इतना है कि अब ये रिचुअल दीप फूड के फार्म फ्रेश दही के साथ होता है। दीप फूड्स दही ना सिर्फ हार्मोन फ्री है बल्कि असली होम स्टाइल दही का स्वाद देता है। तो अभी भी एक चम्मच दही के बदले एक कटोरी दही खाने की आदत बरकरार है। और अगर आप भी किसी भी नए काम की शुरुआत दही चीनी खाकर करते हैं तो जरूर ले आइए दीप फूड्स फार्म फ्रेश दही, क्योंकि अच्छी आदतें कभी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मिर्ची पे ये हॉट सा गाना सुनने की आदत। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सूज़ा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं। टेल मी ऑन इंस्टा, तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हाई।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, सबसे अच्छी शायरी ना अक्सर किसी डायरी में नहीं, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और अक्सर लोग फ्रेंडशिप डे पे ना सिर्फ हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे इतना ही लिखकर भेज देते हैं, तो अगर आपने भी इस फ्रेंडशिप डे यही किया है और मन में आया ये ख्याल कि यार थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी, थोड़े और मज़े किए जा सकते थे, तो मौका बिल्कुल नहीं चूका है, क्योंकि आपके लिए आ रही है एक ऐसी शाम जो आप दोस्तों के नाम कर सकते हो। जी हाँ, कल्टीवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड लेकर आ रही है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट, जिसमें होगा लाइव म्यूजिक, शायरी होगी, डांस होगा, डिलीशियस 3-कोर्स डिनर होगा, और सबसे जरूरी दोस्तों के साथ वो यादें होंगी जो सालों तक याद रहेंगी। फ्राइडे अगस्त 7th 7 PM ऑनवर्ड्स रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस में। टिकट्स अवेलेबल है सुलेखा.com पर, या फिर आप जो इनकी ऑर्गेनाइजर है ज्योत्सना शर्मा, उनको भी कॉल कर सकते हो 7329972409, 7329972409 फॉर स्पेशल डिस्काउंट्स या फिर ग्रुप बुकिंग्स। और मिर्ची लिसनर्स, अगर टिकट्स जीतना चाहते हो तो यार हमें व्हाट्सएप कीजिए एक सिंपल सी शायरी, 2-4 लाइन की पोएम अपने दोस्त के नाम। वैसे बड़ी बड़ी उर्दू की जरूरत नहीं है, बस दिल से होनी चाहिए। तो जल्दी से टाइप कीजिए दोस्ती, अपने शायरी के 2 लाइन, और हमें व्हाट्सएप कीजिए 9033647244, 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे @RJMirchiSiddhi SIDDHI पर भी अपनी शायरी भेज सकते हो। तो जल्दी से फोन उठाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और दोस्ती को शब्दों में सजा दीजिए। और अब दोस्ती की बात हो ही रही है तो ये अगला गाना दोस्तों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शर्मली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाले किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपरहिट एल्बम का सुपरहिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198 3983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटा।
5: विद मिर्ची, फ्रेश माल।
6: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विद अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHR, और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: शाम शानदार, let's do nautanki, have a funky time.
2: फ्रेंडशिप्स डे पे सबके मैसेजेस आते हैं, लेट्स कैच अप। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। लेकिन दिक्कत यही है कि यार सब लिख तो देते हैं लेट्स कैच अप, लेकिन वो मिलना हो ही नहीं पाता। तो आपके भी अगर फ्रेंडशिप डे के प्लान का यही हाल हुआ है तो यार इस बार सिर्फ प्लान्स मत बनाओ, उन्हें सच में कंप्लीट भी करो, क्योंकि आपके लिए आ रहा है दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 बाय कल्टिवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड। एक शाम जहां होगी लाइव म्यूजिक, शायरी, डांस और 3-course डिनर का फुल ऑन कॉम्बिनेशन। मतलब दोस्तों के साथ वो परफेक्ट कॉम्बो जहां फोन से ज्यादा यादें कैप्चर होंगी। तो डेट नोट डाउन कर लो, August 7th शुक्रवार की शाम 7 PM ऑनवर्ड्स एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ रॉयल अल्बर्ट पैलेस। और इसकी टिकट्स आपको मिलेंगे sulekha.com पर, या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर ज्योत्सना शर्मा को आप कॉल कर सकते हो एट 732-997-2409 732-997-2409। और कॉल जरूर करना, स्पेशली अगर ग्रुप बुकिंग्स है तो बहुत ही अमेजिंगली आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या फिर आपके ग्रुप बुकिंग्स इजीली मैनेजेबल हो जाएंगी। कॉल जरूर करना ज्योत्सना शर्मा या फिर तरुण शर्मा को फ्रॉम कल्टिवेट टैलेंट्स अनलिमिटेड। और दोस्तों मिर्ची पर एक अनोखा कॉन्टेस्ट, यार आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना उनके लिए 2 या 4 लाइन की एक प्यारी सी शायरी या पोएम आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल, फनी, इमोशनल या फिल्मी, जैसे भी आपकी दोस्ती हो वैसे एक शायरी लिख दो और हमें व्हाट्सएप कर दो ऑन आवर मिर्चीज नंबर 9033647244। और आपको बस लिखना है दोस्ती, आपकी प्यारी सी शायरी, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो एट @RJMirchiSiddhi SIDDHI, क्योंकि सबसे दिल को छू लेने वाली एंट्री जीतेगी दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0 के टिकट्स। तो चलिए अब उस दोस्त को याद करते हैं जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, और उसी फीलिंग के साथ सुनते हैं ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: not Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchelor, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट। दिस इज समथिंग।